स्पंदिरम उल्लुलम पुलगम उल्लासम सुखम सुंदरम सुदंदिरम उल्लम पुलगम उल्लासम सुखम सुंदरम सुदंदिरम उल्लम पुलगम उल्लासम सुखम सुंदरम सुदंदिरम।